0: Boleh? Ero to? Lau.
1: Aha, kati ramro mangalsutra? Kaha bata lyago?
0: Kaha bata hunu ni? Maile didi bahini sunsari ghar gahana udyog bata lyako ni?
1: हजुर हामी कहाँ नयाँ तथा पुराना आकर्षक डिजाइनमा सुन चाँदीका गरगहना अर्डर अनुसार तयार गरिन्छ।
2: दिदीबहिनी सुन चाँदी गरगहना उद्योग नीलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर 3 शान्त बजार धादिङ प्रोप्राइटर मेनुका बराइली सम्पर्क नम्बर 9818 32 74 73 9861 75 49 88 9861 75 88

0: 6.9 को शानदार डिस्प्ले, AI powered camera, 2 वर्ष को वारंटी सहित Redmi A7 मा 5200 mAh तथा Redmi A7 Pro मा 6000 mAh powerful battery को साथ थप अत्याधुनिक विशेषताहरूले तपाईको मन जित्छ बारम्बार।
1: रेडियो बिहानी 97.6 MHz।